लीजे संग न चालत तेरे तना। ए जीव, ए तन, ए माया, दौलत तेरे नाल नहीं जानी, एने तेरा साथ नहीं देना। सह पंचम पातशाह फरमान कर दे ने संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मन। ए मूर्ख मन, क्यों तू माया दे विच उरदिया वे, क्यों मोह माया दे जंजाल विच पै गए, अपनी सलीयत नु भुली बैठा है, माया ने ते तेरे नाल ही नहीं जान। संग ना चालस तेरे तना, लेंदा पद दुआए तू माया करे अकत। क्यों बस हिस्सा ले बदुआ लेके माया नु अकत्र कर रहे, माया कठी ना कर। ए ठीक है के माया तो बगैर गुजारा नहीं, निर्दन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे कितना तरे, निर्दन नु कोई आदर भी नहीं देंदा, माया तो बिना गुजारा नहीं। पर सैम आख दे ने जीव माया भी ओनी होवे जो तेनू परमेश्वर दा ना ना भुला दे, तेनू वाहेगुरु भुल ना जावे। माया भी ओनी कोई चाहिए गुजरायन जोगी। सैं फरमान कर दे ने लैंदा बद दुआए तू माया करे अकत। जिस माया नू तू अकत्र कर रहे, उस माया तेरे नाल नहीं जाना। संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना। इस जुग में शोभा नाम की, पर इंसान दे मन अंदर गलत फहमी पैदा होगी। कहिंदा माया दे नाल ही सब कुछ है। जी माया ते जहान है, जी माया ते साख संबंधी ने, जी माया ते रिश्तेदार ने, जी माया ने ते धियां पुत्र ने, नहीं ते माया तो बिना कौन किसे नु कुछ समझदा है, माया तो बिना कदर ही नहीं। पर सैं फुरमान कर देने जीव ना, इस युग में

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय दे रागां विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये करुणा का राग है, पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियां का प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग का मजमून स्पष्ट कर देता है। सिद्ध गोष्ट रामकली सद अनंत साहब दी बाणियां इस राग विच हन। ओंकार दी बाणी विच जो दक्षिणी तर्ज ते है, प्रभु दे करता पुरख होण दा विश्वास दृढ़ करवाया है। आनंद दी प्राप्ति लई आनंद साहब विच अध्यात्मक धार्मिक अते मनोविज्ञानिक उपदेश दिते हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषभ अते ध्यावत कोमल दोनों मध्यम अते दोनों निषाद लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध हैं। इस राग दे आरोह विच ऋषभ स्वर का त्याग किया जाता है। इस दे गाउण दा समा दिन दा पहला पहर है। रामकली राग विच जिन्हां दो शब्दां दा कीर्तन सरवण करोगे वह हैं, पहला रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर कै शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार। ये गुरु अमरदास पिता का उच्चारण किया शब्द है। इस राग विच गा रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। दूजा शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। इस गा रहे हैं बीबी गीता कौर पेंटल जी। पहला शब्द सरवण करो, रामकली राम मन वसिया ता बनिया।

जिस घर दे विच चार भरा इकट्ठे होके नहीं बैठ सकते वह घर कदे भी आबाद नहीं हो सकता। अज इत्थे देखना करिए गुरमताशे मुताबक सिक्खी वाल देखना करिए सिक्खी दे पता नहीं कितने धड़े बन गए ने, पता नहीं कितनी जातां विच वंड दिता है सिक्खी नूं। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां ने सीस पांच प्यारियां तो पांच ले पर अमृत एक बख्शिया सी, वो कारण की सी? अमृत एक बख्शिया उसका कारण की सी कि मेरा खालसा जात पात तो मुक्त हो जाए। अज खालसा देहधारियां पखंडियां तो छुटकारा पवा सके, जिवें कि अज आम ही देखण चाहुंदा है ये गुरुद्वारा रामगढ़ियां दा है, ये गुरुद्वारा शिंबियां दा है, ये गुरुद्वारा पापियां दा है, मतलब कि सिक्खी नूं असीं पता नहीं कितने धड़ियां दे विच वंड दित्ता है। सतगुरु बड़ा सुंदर उच्चारण करते हैं सिक्खी नूं धड़ियां विच वंडण वालियां।

आओ अज असीं अपने घर नूं देखना करिए। अज किसे गुरमुख नूं पुछ लिया जाए, भाई साहब जी तुसीं अमृत कित्थों छके आए, तां आम ही आवाज आउंदी है कि मैं विवेकिया तों छके आए। कोई कहिंदा मैं टकशालियां तों छके आए, कोई कहिंदा मैं अकालियां तों छके आए। हालांकि सारे दलों दे विच ही पंज प्यारे अमृत छकाउंदे हन, ते कलगीधर पातशाह जी दा हुक्म ही उस दिन ही कलगीधर पातशाह जी ने हुक्म कर दिता सी जिस दिन पांच प्यारे साज के अमर तैयार किया सी, अते सरबत कौम नू पांच प्यारे नू गुरु बना के वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला वाला खिताब दिता सी पांच प्यारे नू। पर अज सिखी बहुत ज्यादा भटक चुकी है। अज संसार नू हो पता नहीं की गया है, घर घर दे विच अग लगी हुई है, भयानक ज्वाला भटक रही है। भरा नू भरा नहीं देखना चाहुंदा। दो मिनट वास्ते असी सिखी दायरे तो बाहर जाइए। दस दा कहण तो भाव बाबरी मस्जिद अते राम जन्म भूमि बारे है। जिस वक्त ये भयानक युद्ध चल रहा सी तां दास ने एक विचार आया मन दे विच कि शायद इस जदोजहद जां युद्ध दे विच गुरु नानक पातशाह किधरे आ भी जाते तो गुरु नानक पातशाह ने हिंदू और मुसलमान को उपदेश पता की देना सी। क्या हिंदुओ मुसलमाना की मस्जिद वरान ना करियो, क्योंकि इस दे विच भी उही राम वसदा है जिसनों तुसी मानते हो, उस दे विच भी उही अल्लाह ताला वसदा।

सदा तेरी आस सबको आस तेरी बेटा। हे मेरे मालिक, इस संसार विच कौन ऐसा व्यक्ति है जेड़ा तेरी आस तो बिना जी रहे है। तेरे दर करते सब ने आस लाई हुई है। किस लिए? क्योंकि आप सब दियां आसां पूरियां कर दे हो। जिड़ा भी इस दर ते आस लैके आंदा है उदी आस पूरी हुंदी है। एवें नहीं कोई इत्थे आंदा, हर किसी दे मन दी कोई ना कोई आस जरूर है, पर शायद आस उत्थे कीती जांदी है जिथे पूरी हुंदी हो। जिथे कोई पूरी ना करे उथे कोई आस नहीं रखता। सानू आप ते आस है, ये गल वक्री है। आस भी कई प्रकार की है। एक गल का ख्याल रखना, आस पक्की होवे कच्ची ना होवे। कर आसा आई

कर आसा आयो प्रभ मांगण। मैं बड़ी आस करके ही मेरे मालिक तेरे दर तो मंगण आया। कहिंदे ने मंगिया फरीद ने भी, बाबा फरीद ने मंगिया आस लाई। लिखो हुण आस कैसी है, साडे कलजुगी जीवां दी तरह नहीं, साडी आस ते बहुत कच्ची है। दो चार वर्ष ही गुरु घर आउने आ, आस पूरी हो जाए ते ठीक है, पंजवें दिन गुरुद्वारे ही नहीं वड़दे, साडी आस ही नहीं पूरी हुई। नहीं भाई, इस दर ते हर किसी की आस पूरी हुंदी है। हां ये गल जरूर होई है कि जिस वेले आस पूरी होनी सी उस दिन तू आया ही नहीं, उस दिन तू दर छड़ के ही चला गया है। इत्थे ते रोज आ, रोज हाजरी पर, पता नहीं किस वेले अरदास मंजूर हो जानी है। आस पक्की रख के बह, ए ना सोच के पूरी नहीं होई, जरूर होवेगी। हुण बाबे फरीद दे किसे आस लाउणी है,

भगत रविदास जी कहिंदे ने मैं ते इसे आस ते जीउण डे तेरे दर्शन देखने ने भावे चिर बाद ही होण दर्शन तेरे जरूर करने ने भाई ये ताई हो सकता है मानू ऐसा निश्चय यकीन विश्वास हो जाए वह भी तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते कि हे मेरे मालिक मैं तेरे दर्शन करना है ते भगत जी कहते ने कहो रविदास परों तेरी सांभा भेग मिलो जन करना बिलांबा हे मेरे मालिक जन तक तेथों दूर सा मैं देरी भी बर्दाश्त कीती है ते दूरी भी बर्दाश्त कीती पर हुण तेरी शरण विच आ गया हुण ना ते देरी बर्दाश्त हुंदी है ते ना दूरी क्योंकि दूरी मिट गई है फिर देरी क्यों बेग मिलो मैनू जल्दी मिल जन करना बिलंबा बिलंबा कहिंदे ने थोड़ी जी भी देर ना ला टेल ना ला टाइम ना ला मैनू जल्दी मिल इसलिए साध संगत आओ ये अमृत वेला भागा वालियां नू नसीब हुंदा है बहुत कर्मा वालियां नू ख्याल करिया करो गुरसिख दे वास्ते गुरु दियां हर वक्त बाहां फैलियां होईयां ने आवाज देंदे ने आए मिल गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे ओए आ भाई आ मैं तो तेरी उड़ीक विच हां मैं तेरी इंतजार पिया करना ते तू अजे सुता ही नहीं उठया जे तू सुता नहीं उठया ते पाठ कदों करेगा जे पाठ नहीं कीता ते गुरु घर कदों आवेगा ते जे गुरु घर नहीं आया ते उस मालक नाल कदों जुड़ेगा कदों दे नाल तेरी प्रीत लगेगी आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो गावो सची बाणी आओ भाई ये बाणी गुरसिख वास्ते है ते गुरसिख ने सुननी है ते आपां ये दो चीजां जरूर प्राप्त करिए अमृत ते अमृत वेला क्योंकि जड़ तक सिख पंथ अंदर ये दो चीजां रही ने चढ़दी कला विच रहे है जदों ये दोवें खुश गईयां ये टहिंदी कला विच तुरना शुरू हो गया साडे कोल इस वस्त खुश गई है ठीक है असीं इन्हां मुल्कां विच आ ते गए हैं इत्थे आ के असीं बड़ा कुछ गवाया है पाया कुछ भी नहीं मैं नहीं कहिंदा जिन्हों भी वेख लो तुसीं मिल के वह कहिंदा रहण नूं मन नहीं करदा मजबूरन रह रहे हैं भाई जे कोई मजबूरी है तो चलो गुरु नाल ही मिल लो गुरु घर ही आ जाओ जिथे आ के कुछ देर ते मन नूं सकून चैन आराम मिले ऐसी गल नहीं है इत्थे रह के भी असी बड़ा कुछ गुरु को प्राप्त कर सकते हाँ आओ ये दो चीजां जरूर हासिल करो अमृत ते अमृत वेला क्योंकि जिदे कोल अमृत ही अमृत वेला है उदे कोल सब कुछ है ते जिदे कोल दोवें चीजां खुश गईयां उदे कोल कुछ भी नहीं है वो खाली है सतगुरु बख्शिश करे सतगुरु रहमत करे अज अमृत वेले तो तुसां सतगुरु दे दर ते हाजरियां भर के संपूर्ण श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन आसा दी वार दा कीर्तन ओ है धन गुरु नानक पातशाह दा हुक्म है जिहड़ा मन करके करे ते मन करके सुने ओदियां आसां पूरियां हो जांदियां ते असीं जिन्ने भी बैठे हां आस ला के बैठे हां सब को आसे तेरी बैठा सारी सृष्टि तेरी आस ते जीवत है कोई है ऐसा जिन्हों मालिक तेरी आस ना होवे हर कोई तेरी आस ला के बैंदा है आपां अरदास करिए सतगुरु साडियां आसां पूरियां करन अपने दर ते हाजरी लाउंदे होए आओ प्यार शब्दा सहित सारे मिलके रसना नूं पवित्र करो एक दो मिनट आपां सिमरन विच भी लाइए।

स्थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगात कथन करदे हन। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहिब ते ऊने साहिब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीण लई, ज्यों पानी पीण लगदा तां इसते मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा है बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई। ते ज्यों इस मच्छी नू चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे सिंगां विच फस के शरीर छड गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने, जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही जबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखे कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण तै चार, चार मरण ते शै मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। ज्यों निशाना मारिया मिर्गनी नू, ता मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसदे बच्चा होण वाला सी, क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी, उथे नेड़े ही सप निकलिया जिसने शिकारी नू दस्या। शिकारी नू दस्या ते शिकारी ने झट तलवार कढ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए। इन्हां चौहां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घर वाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, ओ भी ओथे ही टकरा मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ए सब कुछ अखी वेख रहे सन। ए शे दी गिनती कीती है बाणी दे विच, मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न ते पेट दा बच्चा, ए चारे पुरख हन। शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ए दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया, तां अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई। इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया, सप ने डंग मारिया, ते शिकारी ने झट तलवार मार के
ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸ਼ਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

कैसा मरना हो। जेकर साहब मनो ना विसरे तां सहला मरना हो। हजूर कहंदे न मरना सच है, जीवना झूठ है। ऐ मनुख मरने नाल तां जगत डरदा है, गुरमुखां नूं कहदा भई डर है। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईए पूर्ण परमानंद। जिन्हां ने आके श्वास श्वास भजन कीता सिमरन कीता, वो तां बाजी जीती बैठे हन, वो तां पुग चुके हन, वो तां जीवन मुक्त हन, उन्हां नूं मरने तो डर नहीं। गुरु अमरदास पातशाह कहिंदे हन, जिहड़ा हुक्म बुझ गया है गुरु दा, संसार ते आउण दा जिन्हूं पता लग गया भई मैं क्यों आया, ते फिर उसने सेवा सिमरन परपकारी जीवन बिता दिता है। गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्म है बूझे सोए, नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए। ओ सदा जीवदे हन जेड़े गुरु दे हुक्म विच निर्मल पाओ विच अपना जीवन बतीत करदे हन। भाई साहब नंद लाल जी कहंदे हन कि गुरमुख हमेशा जीते हैं, मरते कभी नहीं वो, जिनकी जबां पे हर दम सतनाम वाहिगुरु है। जो हर वेले ईश्वर भगती विच जुड़े हुए हन, जो हर वेले अपने मालक दे चरणा विच जुड़ के जपदे हन श्री वाहिगुरु, फिर भाई उना नू उना दा आउना भी सफल है, उना दा संसार तो जाना भी धनता दे योग है। ओ सदा जीउंदे हन, नाम रहो साधु रहो, रहो गुर गोविंद, कहो नानक ए जगत में किन जप्यो गुर मंत। तो निरंकार ने जितने श्वास दिते हन भाई, ओ तां उतने ही रहने हन। जे भले कर्म करिए, भले कर्म करन नाल ए साडे श्वास घट खर्च होंदे हन, भोग विलास विछियां विच दुगने श्वास खर्च हो जांदे हन, जिस करके उम्रा घट जांदी है। ते जे सतपुरशां दी संगत रहे, गुरु की संगत विच मन करके भी तन करके जाग के नाम दा अमृत पींदे रहिए, तां ए श्वास जमा रहंदे हन, घट खर्च होंदे हन। फिर जिस तरह माया बैंक विच पई होवे तां विहाज नाल मिलदा है, इसे तरह वधदे रहंदे हन जदों चंगे कर्म कोई करदा है। उम्र उतनी हुंदी है, श्वास उतने ही हन, तेरे खर्च करन विच कई मनुख कुकर्म करके अपने श्वासां नूं छेती जाया कर जांदे हन। कई एक एक श्वास नूं जप जप के सफल कर लैंदे हन, उच्चारण करो श्री वाहिगुरु, पर श्वास उतने ही हन जितने निरंकार ने दिते हन। और क्या जानना कि वो मरेंगे कैसा मरना होए, ये कोई पता नहीं है। कारण बनदा ये कारण निरंकार नूं पता है। ब्यास जी दे पास एक बच्चा सेवा करया करदा सी, आके ते ब्यास जी नूं बड़ा चंगा लग्या, ते जदों उसदे मस्तक दियां लकीरां देखियां ना, ते समझ गए भाई इहदी ते उम्र ही थोड़ी है, पर हर वेले सेवा विच लगा रहिंदा सी। ते मन विच सोचिया भाई अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दे अगे सिफारिश कर दईए, इहदी उम्र वधवा दईए, चलो लै चलदे हां। भगवान शंकर दे पास लै गए कि ओ धरती नूं लै करदा है, क्योंकि एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, उम्र वधवा आईए। जदों इन्हां दे पास गए तां आख्या वही सृष्टि दे रचन वाला तां ब्रह्मा है, उदे कोल चलदे हां, मैं कुछ नहीं कर सकदा, मैं तां हुक्म अनुसार लै करदा। ब्रह्मे दे पास गए, आप उत्पत्ति करदे हो, इहदी कुछ उम्र वध जाए तां कहण लगे।

संसार विच जाके संसार दे सुख नहीं मंगना चाहुंदा। मेरी तुसां ड्यूटी लाई है कि उस मात लोक दी धरती दे उत्ते जाके वध रहे जुल्मां नूं ठल पाउणा है कि हे मालक हे अकाल पुरख मेरे ते कृपा करनी, मेरे विच ए शक्ति पाउणी। सतगुरु जी उच्चारण करदे ने हे रब हे सस। सतगुरु जी उस अकाल पुरख दे नामां नूं अनेकां तरह बयान करदे ने। जिदां आपां इक पंक्ति श्रवण कीती है कि संत सहाय सदा जगमाए कृपा कर श्याम, यह है वर दीजे। सतगुरु जी मैनूं यह वर देना कि मैं शुभ कर्मन ते कबहू ना टरूं। आख्या सतगुरु जी मेरे विच हे रब उस चंद्रमे दे मुताबक उस सूरज दे मुताबक रब आखदे ने सूरज नूं कि सतगुरु जी हे अकाल पुरख उस सूरज दी भां गर्मी भी होवे जोश भी होवे, हे सस उस चंद्रमे दे तरह शीतलता सा सुभाव भी होवे ताके मैं डिग्गिया होया नूं चुक के गल नाल ला सकां। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह उस अकाल पुरख दे पावन पवित्र चरणा विच जोदड़ी करदे होए ए मंग मंगदे ने कि जब आओ की औत निदान बनाए अत ही रण मैं तब जूझ मरो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह दा टीचा ही सी कि देह शिवा भरम होए ए है शुभ कर्मन ते कबहू ना करो। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह उस अकाल पुरख तो ए वरदान लिते ते इस मात लोक दी धरती दे उत्ते आके जुल्मां नूं ठल पाया ते डिग्गिया होया नूं चुक के गल नाल लाया, गरीब दे रक्षक बने दीन दे रक्षक बने। आओ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह दे उचारण किते हुए सवैये दे नाल असीं खालसे दा जन्म दिहाड़ा मनाउंदे हां।

कबीर लागे प्रीत सुजान स्यों लागे प्रीत सुजान स्यों बच्चे लोक हजार मोहे लागती ताला बेली मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय हवेली।

के जीवन सो क्यों विसरे जे गाल न पाने सो क्यों विसरे जे किया जाने सो क्यों विसरे

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोताए। मथुरा कहिंदा है पट के जब तक साडे भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कलयुग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज। और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावें जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावें सनकाद साध सिदादक मुन जन गावें अछल छला, गावें गुण तोम अटल मंडलोए। भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिनिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखे। साथ संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरा दा जिक्र राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचते हैं कि कोई जपन वाला साड़ी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लैके देवते लैके अपनी पुरियां विच जा रहे सन ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया है कौन रो रहे हैं, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए हुए जीव अपने कर्मां दे अनुसार भोग भोगदे हैं, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती। इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जिहड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जिहड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पा के, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, ओ स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया। ताई आखिया